फोड़िया तो फूटे नहीं. ही ट्राई टू ब्रेक द कोकोनट बट ही कैन नॉट. एंड अनलेस ही कांट ओपन द कोकोनट ही कांट एंजॉय द नट. Therefore, this tamas guna is there because we have to see what in our food there is. There is one story. One Mahatma, a sadhu, sitting under the khejri tree. Khejri tree is a very holy tree. In the yajna, when you perform the yajnas, then they said, you must bring the khejri tree. Samidha, khejri ka. About 11 o'clock in noon time, 11-12, one man came riding on the horseback. That man was a kind of terror. What? Do you know what is terror? When you see the terror, you are terrified. Terrorist. Don't take risk to come near the terrorist. Well, that man, the bandit, the thief, all people were afraid from him. He saw the sadhu meditating and he begins to think different. That's called Abha Mandal. That's called the energy. Only looking, it changes your feelings. Every blood cells begins to speak inside what's happening. It opens to come nearer, to go through, to melt. Or it closes. Anxiety, fear, no trust, fear to be lost. When you see a tiger sitting in the forest, you like to see him, but you are not going to hug him. No? You can hug, no problem. Twice you can hug, the first and last. That's all. But if there is a sitting little lice, little rabbit, baby, you have no fear, you will go and touch. He will have fear from you. So what kind of radiance is coming from you? That opens your Anahata chakra. Changes your mind. When you go to the Shiva temple, if your Anahata chakra and your Agya chakra is purified, you will see the round Shiva temple radiance, light. And that light will enter into you and you will be enlightened, though you don't know you are enlightened. There's one example, but I don't think that you should try. There's an electric wire and you don't see there's a radiance. How does it come, radiance? Touch. Oh, you will be full of the radiance. Lost for ever in that radiance. But Shiva's radiance is not like that. As long as you are in this length of the aura, Abha Mandal, your entire self becomes receptive.
surrendered. Bhava, bhakti bhava, confidence. But as soon as you see the tiger, your heartbeat is stronger without your permission. And you try to escape, hide. You would like to see, but from far. That bandit, he saw the sadhu sitting. Pandit begin to think, लोग कहते हैं कि महापुरुषों को साधुओं को भोजन कराने से कुछ पुण्य होता है. मैंने जीवन में इतने पाप ही पाप किया, डाकू कहता है, तो आज साधु को देखा तो चलो हम भी इनको खाना खिला देते हैं, कुछ पुण्य कमाएंगे. ही बिगिन्स टू थिंक दैट पीपुल सेड इफ यू सर्व एंड गिव समथिंग टू ईट or something to some sadhus, holy men, you get something good back. Punya, pious. He decided to give eating to the sadhu. He got off the horseback and came, pranam. No? Not like this, pranam. You know, he didn't want to surrender. He was a bandit, you know. But still he said, pranam. Pranam, Gurudev. Are you hungry? Babaji said, yes, I am hungry. Do you want to eat? Yes, but who are you? So he introduced himself. Who is he? At least he was honest. Then sadhu said, I will not eat your food. I will not eat your food. वो डाकू कहता है कि महाराज भूख लगी है, भोजन करना है. कि हाँ भैया भूख लगी है, भोजन करना है. लेकिन तुम कौन हो? वो सत्य बोला कि मैं एक डाकू हूं. तो बोला कि ऐसे पापी के हाथ का भोजन हम नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ का अन्न खाने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी. आई डोंट ईट द फूड फ्रॉम सच ए सिनर्स हैंड्स. इफ आई डू, माई इंटेलेक्ट, माई बुद्धि विल बी कंफ्यूज, लॉस्ट, पोल्यूटेड. But he said, but you have to eat today. Master said, no, I will not eat. He said, okay, went away. But inside his, to make his sankalpa, in any case today, he have to eat my food. महाराज ने कहा कि हम नहीं लेंगे डाकू के हाथ का भोजन, चोर के हाथ का भोजन, खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी. वो घोड़े पे चढ़ के चला गया डाकू, लेकिन मन ही मन में विचार करता है, चाहे कुछ भी हो, बाबा जी को आज मेरा ही भोजन खिलाया जाएगा. महाराज ही वॉज सिटिंग इन मेडिटेशन एंड दैट डाकू बंडेट वेंट टू वनर restaurant, to some farmer have a little restaurant also. When they saw the bandit is coming, oh God, can you imagine? They thought, today was a Friday and the cat was crossing the way. He came down, they said, yes sir, good morning sir. He said, okay. There is sitting one sadhu 2 kilometers far away under the tree. Take nice food and give him to eat. They said, yes sir, we will do, but here is the money. They said, no boy, we don't need money, we will do it. We are happy to do for you. He said, no, today I give you money.
Next time I will not give, but now today I give you money. कोई छोटा होटल था, वहां डाकू को देख करके वो तो बेचारे घबरा गए, अरे वो राक्षस कटवाई गयो, घोड़े से उतर के आके बोला कि 2 किलोमीटर दूर महात्मा बैठा है खेजड़ी के नीचे, भोजन कराना है और ये पैसे ले। तो बोला पैसे नहीं चाहिए, हम सेवा कर लेंगे। क्या नहीं, आज तो मैं पैसा दूंगा ही, दूसरी बार आएंगे नहीं लेंगे। जाओ बढ़िया से बढ़िया भोजन बना करके खिला करके आ जाना बस। वेल दे वेंट, दे टुक द फूड एंड दे वेंट टू बाबा जी। बाबा जी सो सम पर्सन इज कमिंग विद द फूड। आओ भक्त, कम वेलकम भक्ता, व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट आर यू डूइंग। आई हैव ए लिटल रेस्टोरेंट। All right. Prabhu, would you accept my food? Said yes. तुम कौन हो? कि मैं छोटा मजदूर हूं, रेस्टोरेंट है। अच्छा प्रभु, हम आपके लिए कुछ प्रसाद भोजन लाए, खाइए, खिलाओ बेटा, खा लिया। While eating his buddhi changed. No, if you drink slowly, slowly glass milk, you become nice, happy and relaxed. But you drink slowly, slowly vodka or whiskey, after half glass, you feel here the bees inside. Huh? Now the Maharaj is thinking, Babaji, आज तो कहीं गांव में जाना चाहिए, जंगल में बैठे बैठे परेशान हो गए। अरे जंगल में बैठे बैठे परेशान हो गए, अब तो कहीं गांव में जाना चाहिए, भक्तों को दर्शन कर देना चाहिए। बोरिंग सिटिंग अंडर द ट्री सो मेनी इयर्स, नाउ आई शुड गो टू सम विलेज एंड गिव सत्संग। केम There was a beautiful small Shiva temple near the village, very near, close. He asked the Pandit Pujari if there's a room. They said, yes, there's one room for sadhus to stay. He stayed there. Evening prayer, and he came to prayer. There was a beautiful Shiva statue, not only Shiva Lingam, made out of gold. Now the food of the bandit is working in his blood. They were making prayer and he was hypnotized by statue, gold, gold. Many years he didn't see any gold. Now he decided to steal the Shiva statue. How to take away? Trick. All people went to sleep. And 2 o'clock, he woke up, went to Shiva's temple, and statue was very strong, tied, fixed by good worker, a good engineer like Yogesh, you know. You can't move. So Babaji took this statue like this and he was doing half hour like this. My Lord Shiva, come to me. Come here, my dear Lord Shiva. In my heart I made temple for you. Moving. Come on, Lord. Move up, move up. Statue came out. Sweating, tired, blue spots. Took it and went away. Hari Om. Babaji gaav ke andar aaye. Dekha ki Shankar ka mandir, pujari ko kaha ki rehne ke liye jagah hai, ki ye kamra hai.
साधुओं के लिए वहां रुक गया। श्याम को आरती में आए, भगवान शिव की बहुत सुंदर एक मूर्ति थी सोने की, करीब 5 किलो की। आरती हो रही थी, सोना चमक रहा है। बाबा जी तो देख करके पागल हो गए कि जिंदगी में इतना सोना कभी देखा ही नहीं। कितना जल्दी इसको लेके चला जाऊं, पार करें। रात के 2 बजे बाबा जी उठ करके मंदिर का दरवाजा का ताला तोड़ करके अंदर गए और मूर्ति को पकड़ के, बहुत मजबूत काम था योगेश जी की तरह, लेकिन बड़ी मुश्किल से मूर्ति को जैसे तैसे निकाला और 3 बजे लेके बग गया। 2:30 बजे पुजारी पूजा कर, 3:30 बजे पूजा करने को आया, देखा कि मूर्ति है ही नहीं। घंटी बजाई जोर जोर जोर से, तो गांव के लोग दौड़ करके आए। 3:30 द पंडित जी केम फॉर पूजा, टेम्पल डोर वॉज ओपन, शिव जी वॉज नॉट देयर ऑन द अल्टार। ही रेंग द बेल लॉन्ग एंड द विलेज पीपल वेर रनिंग कमिंग, वॉट हैपन्ड। स्ट्रांग पीपुल लाइक जसराज जी एंड प्रेमानंद जी एंड दे वेर रनिंग केम, वॉट हैपन पंडित जी, स्टेच्यू इज स्टोलन, डू यू नो एनी बॉडी? के आई डोंट नो एनी, इफ आई स्टे एनी बॉडी हियर, कि वन साधु इज स्टेइंग इन द रूम, दे वेंट देयर, देयर इज नो साधु। दे टुक द टॉर्च लाइट, दे सो द स्टेप्स रनिंग, दैट आई वॉज नो कॉन्क्रीट सीसी रोड, यू नो देयर वॉज ओनली सैंड रोड, सैंडी रोड। सो young people were running and Babaji had a Shiva statue and running. सभी गांव के लोग आए, देखा कि शिव जी की मूर्ति चुरा गई। पंडित बोला कि गई का पता नहीं किधर, कोई यहां आए थे क्या? बोला एक महाराज रुके हुए और कोई नहीं है। जाके देखा कि कमरे में महाराज जी भी नहीं। बैटरी से देखा कि वहां पैरों के चिन्ह मंडे हुए, उस समय ये सीसी रोड डामर की रोड होती नहीं थी। किधर भगा, देखा उनके पैरों के चिन्ह, तो बहुत से लोग उधर जवान लोग दौड़े। जाते जाते 4 बज रहे थे और प्रभात हो गया, भोर हो गया क्या? नहीं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। गाते हो कि नहीं?

पाव। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब कहां जो सोवत है। प्रकाश होने लगा, उषा काल, ब्रह्म मुहूर्ता। बाबा जी जा रहे हैं, आधा किलोमीटर दूर दिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो लोग भी दौड़ रहे हैं, बाबा जी भी मजबूत है। बाबा जी ने देखा पीछे की फौज आ रही है, अब क्या करे। लेकिन दौड़ने से करने से बाबा जी का वो डाकू का चोर का खाना खाया था ना अन्न, वो पच गया, पसीने से पच करके निकल गया और वापस सद्बुद्धि आ गई। अब बाबा जी सोचे कि कहूंगा कि मैं चोरी करने को आया, तब तो रिपेयरिंग हो जाएगी। हा, तपस्या आती पूरी। देखा भाग्य सेवा एक तालाब था, पानी की झील, सुंदर निर्मल जल। दौड़ करके गए पानी की झील के अंदर, डुबकी लगाई और मूर्ति को स्नान कराने लगे। वो आए गए डाकू चोर कि बोला चुप।

अरसी, प्रेम का प्याला प्रभु कब मेरा। गुरुजी सेड देयर इज अ नेवर एंड, नेवर एंड फ्रॉम दिस डिवाइन नेक्टर, डिवाइन लाइट, एंड इज सो स्ट्रांग। सो आई सेड गुरुजी कैन आई गिव यू वन सजेशन। गुरुजी सेड यस। I said, then, don't imagine Mahaprabhuji here in Agya Chakra, because you give too much tension here. Go in the heart and have him in the heart. Okay. What Guruji said? Okay. Next day when I came, Guruji said, Mahesh, you confused everything. I said, what? I transport Mahaprabhuji from Agya Chakra to Anaha Chakra. Now, this settlement from transport from Jadan to Khatu is not so easy, you know. You have to make many things. So today, I was nearly confused. I mean, Agya Chakra or Anaha Chakra or Agya Chakra? So, but I asked him, have you the headache? He said, no headache, but confusion. Better I should have a headache than such a feelings. So, but after some time, Guruji said to some people, Mahesh have transferred Mahaprabhuji from Agya Chakra to Anahad, from Agya Loka to Anahad Loka. But he said he have still his sabi. Then what he said, he held the lotus feet of Mahaprabhuji in the heart and his divine light in his Agya Chakra. Very different seva, different things. Then Guruji said, when he was doing the Mansik Puja, how from the beginning, early morning when Mahaprabhuji got up and all sevas what Guruji did, he was doing exactly the whole seva, 1 hour. Well, meditation. We need to purify our panchkosha. And this is a anamaya kosha, only what I am telling you. Jaisa khayega ann, vaisa rahega man. Agar koi papi ka ek bhi dana aa gaya, तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसीलिए कहा कि भोजन करने से पहले भगवान को भोग दिया जाता है। मेरा तो कुछ है नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण करते क्या लगता है मेरा। हे प्रभु, हमें महाप्रसादी ही दीजिए, ब्रह्मार्पणम। हम अर्पण करते हैं, त्याग करते हैं, भगवान का दिया हुआ भगवान को चढ़ाते हैं, फिर बाद में जो होता है हम लेते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर कोई ऐसी वृत्ति है या ऐसी कोई ऐसे प्राण उसके अंदर हो, उस अनाज के अंदर, तो वो निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। एक बार गुरुजी ने कहा कि महेश, मेरे सिर दर्द हो जाता, अभी पता नहीं ध्यान करता, तो 3-4 बार गुरुजी फरमाए बोला। तो मैंने कहा कैसे करते आप ध्यान? तो गुरुजी ने कहा कि यहां बाप महाप्रभु जी की सभी विराज रहे हैं और मैं मेरे महाप्रभु जी के दाहिने पैर के अंगूठे के अंदर जो प्रकाश अमृत निकलता है उसका पान करता हूं, और उसी के आधार पर मैंने भजन भी लिखा। महाप्रभु जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि वो इतना आनंद है कि उसका कोई पार ही नहीं है। तो वो कब पूर्ण होगा, वो कब भरेगा? तो बाप जी ने वो भजन लिखा कि प्रेम का प्याला हरि कब मेरा भर से, ये मेरा प्रेम रूपी प्याला जो है प्रभु, कब पूर्ण हो जाएगा, कब भर जाएगा? तो मैंने कहा महाप्रभु जी को यहां से अब हृदय चक्र में ध्यान कराओ आप।
दूसरे दिन आया तो बाबू जी कहते मेरे तो है तो गड़बड़ कर दी मैं, क्यों कि महाप्रभु जी का ट्रांसपोर्ट कर दिया अनाहत से आज्ञा से अनाहत, और सब मेरी वृत्तियों का ध्यान का वो। मैंने कहा हो तो वापस वैसे ही करें आप। बोला नहीं नहीं अब ट्राई करूंगा इधर भी। तो ध्यान की विधि होती है, महापुरुषों को यह अनुभव होता है, गुरु जी को होता था, और हम लोग तो ध्यान करने को बैठते तो क्या होता है, चलो लोग कहते हैं भगवान की पूजा करनी चाहिए, मंत्र बोलते, काम पे तो जाना है ही है। वो इतना आदमी इतना बेकार है, वो पैसा ले गए वापस देने का सोच नहीं रहा है। खैर बच्चों की शादी भी करनी चाहिए। अब ध्यान कर रहे हो कि ये वृत्ति विचार कर रहे हो, इसलिए कहा है कि हमारे महर्षि पतंजलि ने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोधः, योग के द्वारा हमारी चेतना के अंदर चित्त के अंदर जो वृत्तियां विचार चल रहे हैं इनको निरोग नहीं करेंगे, निरोध नहीं करेंगे, इनको रोकेंगे नहीं जब तक हम हमारे अगले गंतव्य या अगली सीढ़ी पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन वृत्ति का निरोध करने के लिए अतः योगानुशासनम अनुशासन जीवन जीना पड़ेगा, अनुशासन ही सफलता की सीढ़ी है, अनुशासन ही परिवार को मजबूत, समाज को मजबूत, और अनुशासन ही देश को महान बना सकता है। जहां अनुशासन नहीं रहा वहां सब मामला बिगड़ जाएगा। इसीलिए पूज्य श्री गुरुदेव का ये भजन जब मैं गाता हूं तो बाप जी की वो मनोहर सभी सामने आती है, मुस्कान आती है और कहते हैं कि तुमने महाप्रभु जी का ट्रांसपोर्ट कर दिया। मैंने कहा बाप जी ट्रांसपोर्ट नहीं किया। तो डॉक्टर शांति विल सिंह नाउ दिस भजन, प्रेम का प्याला हरि कब मेरा भरसी। दीप नारायण भगवान की। तो टुडे आई स्पोक अबाउट अन्नमया कोशा, टुमारो लेट्स कम टू द प्राणमया कोशा। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पांच, दिस आर द फाइव डिफरेंट चैम्बर्स, विद इन दिस फाइव इज दैट जीवात्मा एंड आत्मा दैट हैज टू बी प्यूरिफाइड। देन दिस radiance, the resonance, when this is purified, then you are beyond this all material vibrations. From you is only divine radiance is coming. And anyone who comes closer, sits around you, go around the temple, you are in this above and inside. Deep Narayan Bhagwan ki, देवेश्वर महादेव की, माधव कृष्ण भगवान की, सनातन धर्म की, अलग

स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सब ऋषि मुनि महात्माओं की।

वासुदीप नारायण भगवान की जय। आज की आनंद की जय। भक्त निमिया राय जी की जय।

0: वाने की जय श्रीदेव पुरी जी महादेव की जय सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय विश्वगुरु महामंडलेश्वर श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी योगीराज की जय श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की जय हो माता की जय
1: Om Sri Alak Purisha Mahadeva.
0: Ki jay.
1: Sri Sri Deveshwar Mahadeva.
0: Ki jay.
1: Om Bole Sri Deep Narayan Bhagavan.
0: Ki jay.
1: Sri Madhavananda Holy Guruji Sri Sata Gurudeva.
0: Ki jay.
1: Vishwa Guruji Paramahansa Maheshwarananda Yogiraj.
0: Ki jay.

देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की अलकपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान दीप नारायण भगवान सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति।

ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यं ओम शांति शांति शांति। दीप नारायण भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय। माधव कृष्ण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस, सैल्यूटेशन टू द कॉस्मिक लाइट, एडोरेशन टू द डिवाइन मास्टर्स and welcome all of you. Nice to be again in the Vancouver, and I enjoy to go to the Stanley Park.

0: ओहम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम सोहम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम श्री अलकपुरी जी महादेवाय की जय हो। अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवपुरी सा महादेव की, हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महाशयानंद स्वामी जी गुरुदेव की जय।
0: Hey, where the air is going? Air is going from this side. Sure. Thank you. You can put it near Mahaprabhuji here, maybe. You here?
2: Yeah.
0: Oh, Mahaprabhuji, that's for you, very good. Okay? Yeah.

की जय। श्री द्वेश्वर महादेव की जय। हिंदू राम समरथ सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरन जी योगी राज की जय। आज की आनंद की जय।

शिशुतवेश परमा देव की जय। इंदुराम समरसत गुरु स्वामी माधवरण जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वर नंशी योगी राज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।

0: ओम बली श्री नारायण भगवान की जय। सतगुरु देव की जय। आज के आनंद की जय।
1: सत्य सनातन धर्म की।